निरंकार निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य नानक होशी।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वाय अशांत पापी पाप अशांत कूड़े यार करे करे अशांत मलेर मार पाए अशांत निंदक करे पा नानक नीच कहे मारे आना जामा के जो तो पावे सही कर।

पे जाए फिर साला भी खाला है नदियाँ पे बाहर पासों न जान समुद्र साधता गिरी तुलना अंत न सुखी कह नान अंत न करना देर नान अंत न देखन सुन नान।

कृता निर्भौ निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैदम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच

सारे गावन तुदन चेत गोपत लेख जानन लेख लेख तारम बिचारे गावन तुदन ई

तुरग माश पाए आले, गावन तुदनो रतन उपाय तेरे, आठ साठ तीरथ नाले, गावन तुदनो जोद महाबल सूरा, गावन तुदनो खाणी चारे, गावन तुदनो खांड मंडल ब्रह्मंडा, कर कर रखे तेरे तारे, से तुदनो गावन जो तुद पावन, रते तेरे भगत रसाले।

जिन रचाई, रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी, माया जिन उपाई, कर कर देखा कीता अपना, ज्यों तिस दी वडियाई, जो तिस पावै सोई करसी।

सब सुरति मेलो सुरत कमाई सब कीमत मेलो कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई कहण न जाई तेरी तिल वडियाई आई।

सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहेब साचै नाए रहाउ। साचे नाम की तिल वडियाई, आख थके कीमत नहीं पाई।

आओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोए न किस की तरिया। सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर, काहे मन पाओ करिया। ऊडे ऊड आवै सै कोसा, तिस पाछै बचरे शरिया। तिन कवण खलावै कवण चुगावै, मन मैं सिमरन करिया। सब निदान दस आ

अगम अपारा सब त्यावह, सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा। हर त्यावह संत हो जी सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाना।

सिमरत शाश्वत जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नेह चल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहै सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जानोई आशा महला चौथा तू करता सचियार मेंढा साई जो तौ पावै सोई थीसी।

तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़या आप मिलाया।

तुद बिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेखै जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सर वरड़ै।

पुर भजन की रह प्यासा, तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं।

निवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुज जू करे हो रक्षा राख लेहो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाये प्यारे दीन बंध दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कार विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा

हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दायत जछन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पालमो बाद कियो घट घट के अंतर ही जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै घट घट के पट पट की जानै जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब अकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ट सब तारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते

कर का चीन तनह पेवो, आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तोहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, किह बिद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी, उत पूज खान बहुर राच दीनी, कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव,

दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवा मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताकि काल निकट नह आय है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मोहर हो। रिद सिद करमो सब होई, दुष्ट शाह श्वाय सकै ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो का

मन जिनी वासाया, कहे नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया, तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो।

पौड़ी। तिथे तू समरथ जिथे कोए नाहे, उथे तेरी राख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरा छड जाहे, भउ जल बिखम अस गाहो, गुर शब्दी पार पाहे। जिन कौ

दरगह पाई ठाओ। कहो नानक कृपा करे जिसनु ए वथ दे, जग मह उत्तम काढ़ी है विरले के महला पंजवा।

ऐसी प्रीत करो मन मेरे, आठ पहर प्रवजानों ने सच कहूं सुन ले हो सब है, जिन प्रेम की तिन ही प्रभ पायो, नामे प्रीत नारायण लागी सहज सुपाई पयो बैरागी, साची प्रीत ना टूटी प्यारी जुग जुग रही समाई, हे पाही जिसने माल प्रभु दे नाल संसार नो त्याग के आप त्याग प्रिय नित सरणी गुरते पाई है एहो निधान, ओ फिर सदा लई संसार दे विच एह लोक परलोक दे विच सदा लई अमर हो गए ने, क्यों साची प्रीत ना टूटे प्यारी जुग जुग रही समाए, ओ भगत जन सदा लई अमर हो गए ने जिन्हां ने संसार नो त्याग के केवल ते केवल उस माल प्रभु दे नाल प्यार पाया, सो इनिक सेवा प्रवान करनी हुई है भुला चुका दिखीमा। आओ अगले प्रोग्राम कथा दे सरण करिए, सिख पंथ दे विद्वान सत्कार योग ज्ञानी लखविंदर सिंह जी खालसा जी, उन्हां पासों चल रही धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की गुरबाणी की लड़ीवार विचार सरण करिए, दस रुपति प्रवान करो जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

अंतर्गत तीर्थ मल नहाओ, सब गुण तेरे मैं नाही कोए, विण गुण कीते भगत ना होए, स्वस्थ आ

जय कर कीर्ति आखिया करते का हो विचारो चित कर गावो सोहिला सिवरे सृजनहारो तुम गावो मेरे निर्भव का सोहिला हाँ वारी जित सोहिला सदा सुखो रहाओ नित नित जियड़े संभाली अन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कौन सुमार संभसाह लिखिया मिल कृपाव तेल देहो सजनिया सीसड़िया ज्यों होवै साहिब स्यों मेल कर करे हु पहुचा सदड़े नित पवन।

सुवे चसया कड़ियां पहरा चिती वारी माहो हुआ सूरज को रुतने को नानक करते के केते वेस रागत नासरी मोहल्ला पहला गगन मैं थाल रावचंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती तूप मलया पवन चबरो करे सगल बन राय पूलन ज्योति कैसी आरती होए बहु खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वा जंत भेरी रहाओ सहस तब नैन नान नैन है तो ही कहो सहस मूर्त मना एक तो ही सहस पद बिमल नानी एक पद गंध बेनो सहस तब गंध विचलत मोही सब मैं जोत जोत है सोए तिस दे चानन समय चानन होए गुरु साखी जोत प्रगट होए जो तिस भाव है सो आरती होए हर चरण कबल मकरंद लोभित मनो आंदिनो मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारंका होए जाते तेरे नाए वासा राग गौड़ी पूर्दी मोहला चौथा काम क्रोध नगर बोह भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व जगत लिखे गुर पाया मन हाले मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाओ साखत हर साधना जाने जिन अंतर हमें कंडा हे जन चले चुभ दुख पावे है जम काल सह है सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण पव खंडा है अमनासी पुरख पै परमेश्वर वा सोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड वड्डा हे जन नानक नाम उधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे राग गौड़ी पूर्वी मोहल्ला पंजवा करो बिनंती सुनो मेरे मीता संत टहर की बेला इहा खाट चलो हर लाहा आग्ञा बसन सुहेला आवद घटै दिन सुरै नारे मन गुरमिल काज सुवारे रहाओ एहो संसार विकार संसीम है तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियावै एहो रस अकथ कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाजो हो हर गुरते मने बसेरा निज कर्म है।

कोई मेरा वाहिगुरु बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु अरदास इको ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगौती जी सहाय वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए एक बहादुर सिमरिया घर नौ निद आवै ताए सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुई सहाय दसां पातशाहियां दी जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी हे निमाणियां दे माण नितानियां दे ताण नियोटियां दी ओट सच्चे पिता धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ आप जी का कोटान कोट धन्नवाद है पातशाह जीओ आप जी ने अमृत वेले तो खुले दर्शन दीदारे बख्श के निहाल किया है जी इस वेले दीवाना की संपूर्णता तो उपरंत आप जी के सरूप के सुख आसन की सेवा हुई है पातशाह जीओ सोहेले साहब जी के पाठ हुए हैं बाणी पढ़द्या तो सेवा करद्या तो आप जी की हजूरी विच विचरद्या तो हुई गलतियां भुलों की मुआफी बख्शनी अगे वास्ते समत बख्शिश करनी बाणी का भाव दाराइया संगतां दे हिरदियां ते वसाउणा दाराई संगत की हाजरी तिल फुल भेटा दर प्रवान करने अपने दरों घरों गुरसिखी जीवन नाम बाणी सिमरन की दात बख्शिश करनी तंदुरुस्तियां बख्शनियां किरत कमाइया च बरकतां पाउणियां अपने लड़ लाई रखना पातशाह जीओ चार पहर दिन आप जी दे पाने में सुख ना बतीत होया है चार पहर रहन आप जी अपने पाने विच बतीत करवाउणा इस वेले आप जी का सुख आसन तैयार है आप अपने आसन ते विराजमान होवो सेवकां नूं संगतां नूं खुशियां बख्शो अमृत वेले खुले दर्शन दीदारे बख्श के निहाल करना अमृत वेले का जागना बख्शिश करना सही प्यारे मिलना जिन्हां मिले आप जी का नाम चेतावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

प्रभु का सिमरन साध के संग सर्व निदान नानक रंग प्रभु का सिमरन रिद सिद्ध नव निद प्रभु का सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभु का सिमरन जप तप पूजा प्रभु का सिमरन बिनसै दूजा प्रभु का सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभु का सिमरन गर्गह मानी प्रभु का सिमरन हुए सुफला प्रभु का सिमरन सुफल फला से सिमरै जिन आप सिमराए नानक ता कै लागो पाए प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभु का सिमरन उदरे मूचा प्रभु का सिमरन तृष्णा बुझै प्रभु का सिमरन सब कुछ सुझै प्रभु का सिमरन नाही जम त्रासा प्रभु का सिमरन पूर्ण आसा प्रभु का सिमरन मन की मल जाए अमृत नामृत माए समाये प्रभु जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभु को सिमरै से तनवंते प्रभु को सिमरै से पतवंते प्रभु को सिमरै से जन परवान प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरै से बेमहताजे प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे प्रभु को सिमरै से सुखवासी प्रभु को सिमरै सदा विनाशी सिमरन ते लागे जिने आप दयाला नानक जन की मंगै रवाला प्रभु को सिमरै से पर उपकारी प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावे प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता प्रभु को सिमरै तिन अनंत कनेरे प्रभु को सिमरै बसह अरनेरे संत कृपा दे अंधन जाग नानक सिमरन पूरै भाग प्रभु कै सिमरन कार्य पूरे प्रभु कै सिमरन कबू ना चूरे प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी प्रभु कै सिमरन सह समानी प्रभु कै सिमरन नीचले आसन प्रभु कै सिमरन कमल बिगासन प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार सुप्रभ सिमरन कांत न पार सिमरह से जन जिन को प्रमया नानक तिन जन सरनी पाया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद उपाए हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चौकुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन की सगल अकारा हर सिमरन में आप निरंकारा कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया श्लोक दीन दर्द दुख पंजना घट घट नाथ नाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ अष्टपदि जिह मात पिता सुतमीत न भाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई

पारी अनिक पुनः चरण करत नहीं तरह हर को नाम कूट पापर हर गुरुमुख नाम जपो मन मेरे नानक बाबू सूख कनेरे सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जपत हो सुखिया लाख करोरी बंधन पर हर का नाम जपत निस्तर निक माया रंग तिक न बुझावे हर का नाम जपत आघावे जे मार गयो जात के ला तै हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा त्याई नानक गुरमुख परम गत पाई है छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत है पार पराही अनिक बिघन जय आय सुंगार है हर का नाम तत्काल उदार है अनिक जोर जन मैं मर जाम नाम जपत पावे विश्राम हो मैला मलकबू न तो वह हर का नाम कोट पाप को वह ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाई है साध कै संग जे मार के गन जाहि न कोसा हर का नाम मुहा संग तोसा जे पैटे मंद गुबारा हर का नाम संग उजियारा जा पंथ तेरा को न सुजानू हर का नाम तह नाल पछानू जय महाप्यान तपत बहकाम तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम जा त्रिका मन तुझ आकर कह तह नानक हर हर अमृत भर कह भगत जना की वर्तन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ऊट हर कै नाम उदरे जनकूट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साध कमात हर जन कै हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नू दान मन तन रंग रते रंगी कै नानक जन कै बिरत बबे कै हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर कै नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का पर न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछ नाहि वियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा हर हर जन कै माल खजीना हर धन जन कुआ प्रभ दीना हर हर जन कै ऊट सुतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत भोजन हर रस राते सुन समाद नाम रसमाते आठ पैर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संकेते तरे पार जाते हर को नाम काम तीन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लत्था नाम की महिमा संत रिदोष है संत प्रताप दुर्ग सब नस है संत का संगवड भागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तुल कछे अवर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन को इसलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत विख्यान जोग अभ्यास परम त्रम क्रिया सगुर त्याग गुण मध्य फिरिया अनेक प्रकार किए बहु जतना पुन दान हमे बहु रचना शरीर कटाए हमे करा तीव्रतने करे बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपी एक बार नौ खंड पृथ्वी फिर चिर जीव माओ दास पिसर थी वै गण माय होमत प्राण कनिकसुव है वर भूम दान न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संजम साधन निमक निमक कर शरीर कटावे ताओ पी हो मैं न जावे हर के नाम संसर कछ नाही नानक गुरमुख नाम जपत गत पाई मन कामना तीर दे छुट्टै गर्भ गुमा नमन ते उठै सोच करे दिन सरात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहु साधना करे मन ते कबू न बिकिया डरे जल तो वै बहु दे अनीत शुद्ध काओ काची पीत मन हर के नाम की मैं माऊच नानक नाम उदरे पतत बहमूच बहुत स्याण जमका पौ व्यापै निक जतन कर त्रिस ना त्रापै भेख अनेक अग्नि बुझै कूट पाव दुर्गै नहीं सिजै झूट सुनायु पयाल मोहि व्यापै माया जाल अवर कृतु सगली जिमडानै गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै हर का नाम जप दुख जाए नानक बोलै सह सुभाए चार पदार्थ जे को मांगै साजना की सेवा लागै जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सदगावै जे को अपनी शोभा लूरै सा संगे हो मैं छूरै
जिको जन्म मरण ते डरै साजना की सरणी परै जिस जन को प्रभु दस प्यासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख मैं पुरख प्रधान सा संग जाका मिटै अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गणिया सब ते उच्चा जाका मन हो सगल किरीना हर हर नाम तिन कट कट चीना मने अपने ते बुरा मिटाना पेखै सगल सिर साजना सुख दुख जन समृष्टिता नानक पाप पुन नहीं लिपा निर्धन को धन तेरो नाओ नितावे को नाव तेरा थाओ निमाने को प्रभ तेरो मान सगल कटा को देव दान कर्ण करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गातमित जान हुआ पे अपन संगा प्रभ राते तुम रिस्त तुम ते हुए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सा संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम में उद्यम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जस सुन सुन बखानी सगल थान ते उत्तम थार नानक जे घट वसै हर

पदि। रमैया के गुणचेत पुराणी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन्तु सासवार सिगारिया, गर्भगन में जिने उबारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यारे, दूध पर जुबन पूजन सुख सूद, बिरद पया ऊपर साख सैन, मुख पे आओ बैठ को दैन, निव निर्गुण गुण कछु न बुझे, बख्श ले हो तो नानक सीजे, जी प्रसाद आरु पर सुख बसै, सुत प्रात मीत बनता संग हसै, जी प्रसाद पी वै शीतल जला, सुखदाई पवन पाव कमुला, जी प्रसाद भोगै सबरसा, सबर समग्री संग साथ बसा, दीने हस्त भाव करने तरसना, तिसे त्यागवर संरचना, ऐसे दुख मूडंद व्यापे, नान काट ले प्रव्यापे, आद अंत जो राखन हार, तिस्यो प्रीत न करे गवार, जाकी सेवा नम निद पावे, तस्यो मूड़ा मन हिलावे, जो ठाकुर सा सदा हजूरे, ताको अंधा जान तजूरे, जाकी टहल पावे दरगह मान, तिसे विसारे मुग्ध जान, सदा सदै भूलन हार, नानक राखन हार अपार, रतन त्याग कौडी संग रचै, सा छोड़ झूठ संग बचै, जो चटना स्वस्त्र करमानै, जो होवन सो दूर परानै, छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाय तिस पर हरे, चंदन लेप उतारे तो हे गर्द प्रीत प्रसन्न संग होए, अंध को मैं पतत विकराल, नानक काट लेहु प्रभु दयाल, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात, बार भेगंतर मल माया, चुप सुनाए कुछ करे छिपाया, बार ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापै लोभ सुहान, अंतर अगन बार तन स्वाहा, गल पात्र कैसे तरह था, जाके अंतर बसै प्रव्याप, नानक दे जन सह समात, सुने अंधा कैसे मार्ग पावै, कर गहले हो ओढ़ निभावै, कहा बुझारत बुझै डूरा, निष्कही है तू समझै पूरा, कहा विष्ण पद गावै गुंग, जतन करे तौ पी सुर भंग, कै पिंगुल पर्वत पर पवन, नहीं हो तू हाँ उस गवन, करतार करुणा में दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा तरे, संग सहाई सुवावे न चीत, जो बहराई ता सुप्रीत, बलवा के गृह पीतर बसै, अनंद केल माया रंग रसै, दृढ़ करमाने मने प्रतीत, काल नया वह मूढ़े चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महालोभ त्रोह, याहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख लेहो अपन कर कर्म, तू ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा मैं सूख कनेरे, कोई न जाने तुम राय अंत, उच्चे ते उच्चा भगवंत, सगल समग्री तुम

नानक कहू न सीजई बिन नावे पत जाय अष्टपदी। दस बस्तूले पाचे पावे एक बस्त कारण बिखूट गवावे। एक भी न दे दस भी हिरले तो मूड़ा कहु कहा करे। जिस ठाकुर से ना ही चारा दाको की जय सदनम सुधारा। जा कह मन लागा परमीठा सर्व सूखता हूँ मन बूटा। जिस जने अपना हुक्म नाया सर्व तोग नानक तिन पाया। गंत सुहाओ अपनी देरास खास बीत वर्तन दुलास। अपनी मान कछ बहुर साहुले अज्ञानी मन रोष करे। अपनी परती ताप ही खोवे बहुर उसका विश्वास न हुए। जिसकी बस तिसिया गह रखे प्रभु की आज्ञा मन है मत है। उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल। अनिक भान माया के हित सर प्रभुवत जान अनेत। बिर की छाया स्यो रंग लावे ओ बिन से मन पछतावे। जो दिसे सो चलन हार लपट रहे उत अंध अंधहार। बटाओ स्यो जो लावे नेहि ताकु हाथ न आवे। के मन हर के नाम की बिरि सुखदाई कर कृपा। नानक आपले लाई मिथिया तान तन कुटम्ब सुभाया। मिथिया हो मैं ममता माया मिथिया राजो मन तन माल। मिथिया काम कूद विकराल मिथिया रथ हस्ती सुबस्त्रा। मिथिया रंग संग माया पेकस्ता मिथिया तु रो मोह विमानो। मिथिया पशु प्रकृत गमानो अस्त्र पग साध की शरण। नानक जप जप जीवे हर के चरण। मिथिया श्रवण पर निंदा सुने मिथिया हस्त पर दर्भ को हिरह। मिथिया नेत्र बेकत पर त्रय रूपाद मिथिया रसना भोजन अनुस्वाद। मिथिया चरण पर विकार को तावह मिथिया मन पर लोभ लुभाव है। मिथिया तन पर उपकारा मिथिया वास लित विकारा। बिन बूझे मिथिया सब पय सफल दे नानक हर हर नाम लय। वृथि सागत की आर जा साच बिना कह होत सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंध मुखावक्त ताक दुर्गंध। बिन सिमरण दिन रैन बिरथा बिहाई मेक बिना ज्यो खेती जाए। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यो कृपण के निरार्थ दाम। धन धन ते जन जी घट बस्यो हर नाओ। नानक ताकै बल बल जाओ रह तवर कछवर कमावत। मन नि प्रीत मुखो गंड लावत। जन नहार प्रभु परबीन बाहर भेख न काहू पीन। अवर उपदेशय आप न करे आवत जावत जन मै मरे। जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तरह संसार। जो तुम पानी तिन प्रभ जाता नान कुंजन चरण पुराता। करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आप मन आप पाप करत नबेरा। किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा। पाप सियान सगल ते रहत सब कर जाने आत्म की रहत। जिस पाव है तिसले लड़ लाए थान तनंतर रहा समाय। सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरी। श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अंग वेव। नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी। जेह प्रसाद छत्ति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे। जेह प्रसाद सुगंध तन लावै तिसको सिमृत परम गत पावै। जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मन अंदर। जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसै त्या कथवर लुभावै। जे प्रसाद सुख से सुविजै मन आठ पैरता का जस गावीजै। जे प्रसाद तु सब को मान मुक्ता को जस रसन बखानै। जे प्रसाद तुरु रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जप दुर्गै मान पावै नानक पद सिद्धि कर जावै। जे प्रसाद अरु कंचन देही लिवलाओ तिस राम सनेही। जे प्रसाद तिरा उल्ला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत। जे प्रसाद तिर सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताकै। जे प्रसाद तुझको न पहुँचै मन साथ साथ सिमरो प्रभु उच्चे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहि नानक ताकी भगत करे। जे प्रसाद भूखन पहरी जय मन ति सिमृत क्यों आलस की जय। जे प्रसाद असु हस्त सुवारी मन तिस प्रभु को कबू न बिसारी। जे प्रसाद बाग मिलक तनाराग प्रभु अपने मना। जिन तेरी मन बणत बनाई उठत बैठ सत्य सहत्याई तिसह त्याय। जो एक लख हूँ नानक तेरी रखै।
जी प्रसाद करे पुन बोधान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जी प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को साथ साथ चितारी जे प्रसाद तेरे सुंदर रूप सो प्रभु सिमर सदा अनूप जे प्रसाद तेरे निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत्र है गुरु प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुने करना जे प्रसाद बिखे बिस्मात जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सह जे बसना जे प्रसाद हस्त कर चले जे प्रसाद संपूर्ण फले जे प्रसाद परमगत पावे जे प्रसाद सुख सह समावे सब प्रभु त्याग बरकत लागो गुरु प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तुम प्रकट संसार तिस प्रभु को मूल न मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तूता को जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावे सास रे मन मेरे तू ता सिवरा जे प्रसाद सब की गत हुए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो ना आप गावे सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा दे हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दया ते मातूत होए प्रभु दया ते मातूतम होए सर्व निदान प्रभु तेरी माया भू कछु न किन्हु लया जित जित

विनवंता साधना की चर्च कथा अष्टपदी साधक संग को जल होत सासंग मल सगली कोत साधक संग मिटया विमान साधक संग प्रगट सुज्ञान साधक संग जय प्रभनेरा सासंग सभूत नबेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक प्रजतन साध की महिमा वर्णे कौन पुरानी नानक साध की सुभा परमा समानी साध की साध के संग गोचर मिले साध के संग सदा प्रफुल्ल साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुई सब की रेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग नकत हुता वै साध संग स्थित मन पावे साध के संग माया ते पिन साध संग नानक प्रभु सुप्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु का संग महापुनीत साधक संग नि बैर साधक संग न भीगा पैर साधक संग ना ही कुमंदा साध संग जाने परमानंदा साधक संग ना ही होताप साधक संग तजै सव्याप आपे जान साध बढ़ाई नान साध प्रभु बने आई साधक संग न कब हुता वै साधक संग सदा सुख पावे साध संग बस्ता गोचर लै साधु कै संग जर सह साध के संग बस थान उच्चै साधु कै संग मैल पहुंचे साध के संग जड़ सब धरू साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान साध के संग सब कुल उतार है साध संग साजन मीत कुटम निस्तार है साधु कै संग सो धन पावे जिस धन ते सब को वरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गाय साध के संग सर्व तान गम नानक साध के संग सफल जनम साध के संग नहीं किच का हाल दर्शन भेट तो होत निहाल साध के संग कलुकत हरे साध के संग नरक पर हरे साध के संग इहां उहां सुहेला साध संग बिछरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावे साध के संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म साध हृदय बसै नानक उदरै साध सुन रसै साध के संग सुनो हर नाउ साध संग हर के गुण गाउ साध के संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साध के संग लग्या प्रमीठा साधु कै संग घट घट डीठा साध संग भय आज्ञाकारी साध संगत भई हमारी साध के संग मिटे सब रोग नानक साध बेटे संजोग साध की महिमा वेद न जाने जिता सुने ते तब के आने साध उपमा ते गुण ते दूर साध उपमा रही भरपूर साध की शोभा का ना ही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा उचते उची साध की शोभा मूचते मूची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रपेत न पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखै किस बिन कोय नानके लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लोक जैसे सूर सर्व को सोख ब्रह्म ज्ञानी के दृढ़ समान जैसे राज रंको लागे तुल्पवान ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक ज्यो वसुदा को खोदै को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यो पाव का सह सुभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रगास जैसे तारु पर आकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्र समान ब्रह्म ज्ञानी के ना ही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी उचते उच्चा मन अपना है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नानक जिन प्रभु आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना तुम रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पाया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक प्रयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार माह ब्रह्म ज्ञानी कह ना ही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह कह रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार
ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के कार सदानंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वित्ता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी शिखर प्रव्या, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानिया परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए आखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी साध जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल कार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी, श्लोक उर धार है जो अंतर नाम, सर्व में पिख है भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, नानक अपर सगल निस्तार है, अष्टपदी मिथ्या ना ही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, पर त्रै रूप न पिख है नेत्र, साध की टैल संसंग हेत, करण न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद बिखिया पर हर, मन की वासना मन ते टर, इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानकोट मध्य को ऐसा परस, वैसन सो जी सुपर सुप्रसन्न, विष्ण की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत हो वै नहीं कर्म, तिस वैष्णु का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाछे, केवल भगत कीर्तन संग्राचे, मंथन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दड़े ब्रह नाम जपावे, नानको वैष्णु परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मंत्र बिन से सगला परम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म, सासन पापा मल खुवे, तिस भगवती की मत उत्तम हुवे, भगवंत की टहल करे नितनीत, मंथनेर पे विष्णु परीत, हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे, सो पंडित जो मन पर बुद्ध है, राम नाम आत्म शुद्ध है, राम नाम सारस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो नयावे, वेद प्राण सिमृत बुझे मूल, सुख में जाने अस्थूल, चौवर्णा को देव देश, नानक उस पंडित को सदा

पावै जिन कोई कर कृपा अंतरुर तारै पस प्रेत मुगत पात्र को तारै सर्व रूप का उखद नाम कल्याण रू मंगल गुण गाम काहू जुगत किते न पाइय धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सतराम दास आत्म राम तिसन दरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी परे सगल संगत मुदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभु की आज्ञा तुम हितावे जीवन मुक्त सो कहावे तैसा हरख तैसा सोग सदा आनंद तै नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी।

कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगरे ठाऊ जित जित कर रखे तैसा तिन्नाऊ आपे करण करावन जोग प्रभाव सोई फुन होग पसरे आप अंत तरंग लखे न जाहि पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल। श्लोक उस्तद करे अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट बन प्रमय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपिसर होते कई कोट आत्म ध्यान तार है कई कोट कब का विचार है कई कोट नवतन नाम त्याव है नानक करते कंत न पाव है कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट अपिग आत्म निकोर कई कोट पर दर्भ को हिर है कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया श्रमाहे कई कोट परदेश परमाहे जित जित लाभ तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प पाए कई कोट पात्र बिरख निप जाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट सस्यर सूर नखियतर कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूत तारै नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तारै कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद प्राण सिमृतर शास्त्र कई कोट की रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट की चिर जीवे कई कोट गिरिमेर स्वर्ण थीवे कई कोट जकिन्र पिशाच कई कोट भूत प्रे सुकर मृगाच सब ते नेरे सबूते दूर नानक आप लिप्त रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्मह जीवह मरह कई कोट भोजोनी फिर है कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट काले थक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया में चिंत जय जय पाणा तह तह राखे नानक सब किस प्रभ कह हाथे कई कोट भय बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी कई कोट प्रभ को खोजंते आत्म मह पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रप्यास तिन को मिल्यो प्रभ विनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिन को होया सुप्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट काणी अर कांड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होय अवतार कई जूत किन्नो विस्तार कई बार पसरयो पासार सदा सदा के कंकार कई कोट किन्ने भोपात प्रभते हो प्रमाय सुमात ताकांत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नित्रे कई कोट नाम रस पीवै अमर भय सा सद ही जीवै कई कोट नाम गुण गावै आत्म रस सुख सह समावै अपने जन को सा सा सुमारे नान कोए परमेश्वर के प्यारे। श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोए नानक तिस बलिहार ने जल तल महील सोए। अष्टपदी करण करावन करने जो जो तिस भावै सोई हो किन मैं ताप तापन हारा
अंत नहीं किछ पार आवारा। हुक्मे धार धर रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वडियाई, नानक समय रहा समाई। प्रभावै मानुख गत पावै, प्रभावै तां पात्र तरावै, प्रभावै बिन शास्त्री राखै, प्रभावै तां हर गुण पाखै, प्रभावै तां पतत उधारै, आप करै अपन विचारै। दुहां सिरिया काप स्वामी, खिलै बिकसै अंतर जामी, जो पावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै। कहो मानुख ते क्या होए आवै, जो तिस पावै सोई करावै, इसके हाथ होए तां सब किछ ले, जो तिस पावै सोई करे। अन जानत विख्या मैं रचै, जे जानते अपन आप बचै, भरमे भूला दै दिस्तावै, निमक माई चार खुंट फिर आवै, कर कृपा जिस अपनी भगत दे। नानक ते जन्ना मिले, किन मैं नीच कीट कौराज, पार ब्रह्म गरीब नवाज, जाका दृष्ट कछु न आवै, तिस तत्काल दा दिस प्रगटावै, जाकू अपनी करै बख्शीश, ताका लिखा न गने जगदीश, जीव पिंड सब तिस की रास, कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बनता बनाई, नानक जीवै देख वडाई, इसका बल ना ही साथ, करण करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपुरा जियो, जो तिस पावै सोई पुनतियो। कबू ऊच नीच मह बसै, कबू सोग हरख रंग हसै, कबू निंद चिंद व्यवहार, कबू बकास पयाल, कबू बेता ब्रह्म विचार, नानका मिलावनहार, कबू निरत करै बपात, कबू सोए रह दिन रात, कबू मां क्रोध विकराल, कबू सर्व की हो तरवाल, कबू हुए वह बड़ राजा, कबू भिखारी नीच का साजा, कबू अपकीरत में आवै, कबू भला भला कहावै, जो प्रवरा कहते वीर है, गुरु प्रसाद नानक सच कहै। कबू होए पंडित करे बखियान, कबू मोन धारी लावै ध्यान, कबू तट तीर्थ स्नान, कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबू कीट हस्पतंग होए जिया, निक जोन भरमै भरमिया, नाना रूप जो स्वागी दिखावै, जो प्रभावै तिवै नचावै, जो तिस पावै सोई होए, नानक दूजा वर न कोए। कबहू साध संगत त्यो पावै, उस स्थान ते बहुर न आवै, अंतर हो ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मंत्र नाम रते करंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग, ज्यों जल में जले आए कटाना, त्यों ज्योति समझो समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु कै सद कुरबान। श्लोक सुखी बसै मस्कीनी, आया पनिवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले, अष्टपदी जिसके अंतराज अभिमान, सो नरक पाती हो वसवार, जो जाने मैं जो बनवंत, सो होवत दिष्टा का जंत, आप उसको करवंत कहावै, जन्म मरै भोजन परमावै, धन भूमिका जो करै गुमान, सो मूर्ख अंधा ज्ञान, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै, नानकी हां मुक्त आगे सुख पावै, धनवंता हुई कर गर बावै, तिन समान का संग न जावै, बोलस कर मान कूपर करे आस, फल पीतर ताका हुए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत, खिन मह हुए जाए पसमंत, किसे न बदे आप अहंकारी, धर्म राय किस करे कुवारी, गुर प्रसाद जाका मिटै विमान, सो जन नानक दरगै परवान, कोट कर्म करै हो तारे, श्रम पावै सगले बिरतारे, इनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर अवतार, अनिक जतन करा तुम नहीं द्रवै, हर दरगह कौ कैसी गवै, आप उसको जो भला कहावै, तिसे भलाई निकट न आवै, सर्व की रेंजा का मन होए, कहो नानक ताकि निर्मल सोए, जब लग जाने मुझ ते कछ होए, तब इसको सुख नाही कोए, जब जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता,
जब तारे कुबेरी मीत तब लगने चलना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छूटे सहस खट्टे लग कोठ तावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनक भोग विख्या के करे नैतृपतावे खप खमरे बिना संतोख नहीं को राजय सुपन मनोरथ वृथे सब काजय नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसे प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करने हार इसके हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आपा प्रभ सोए जो किच किन्नो सु अपने रंग सब ते दूर सबहु कै संग भूजै देखै करै विवेक कपहे अनेक मरै न बिनसै आवै न जाए नानक सद ही रहा सुमाय आप उपदेशै समझै आप आपे रचिया सब कै साथ आप किनु अपन विस्तार सब कछ उसकाउ करने हार उसते पिन कहो किछ होए थान तनंतर एकै सोए अपने

किन्ह बकियानी सच सच सच सब कीना कोट मदे किन्ह बिरल चीना भला भला भला तेरा रूप असुंदर पार रूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बकियानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै।

ਮਨ ਖੋਸੀ ਭੇ ਸਚਸਟ ਪਦੀ ਚਰਨ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਸਨਹਾਰ ਪੂਜਾ ਸਤ ਸਤ ਸੇਵਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਸਤ ਭੇਖਨਹਾਰ ਨਾਮ ਸਤ ਸਤ ਧਿਆਵਨਹਾਰ ਆਪ ਸਤ ਸਤ ਸਭਧਾਰੀ ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭਕਤਾ ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਤ ਜਸੁਣਤਾ ਬੁਜਨਹਾਰ ਕੋ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਮਾਨੇ ਆ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਿਨ ਮੂਲ ਪਛਾਨੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੇ ਆਇਆ ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਏ ਸਮਾਨਾ ਬਸਤ ਮਾਏ ਲੈ ਬਸਤ ਗੜਾਈ ਤਾ ਕੋ ਭਿੰਨ ਕਹਿਣਾ ਜਾਈ ਬੂਝੈ ਬੁਜਨਹਾਰ ਬਵੇਕ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕੇਕ ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक है मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जान संग प्रभु का सेवक नाम कै रंग सेवक प्रपालन हारा सेवक की राख निरंकारा सो सेवक जिस तया प्रवतार है नानक सो सेवक साथ साथ सुमार है अपने जन का परदाटा कह अपने सेवक की सर पर रख अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत रख ताकि गतमित कोय न लख प्रभु के सेवक को न पहुंचे प्रभु के सेवक ते उच्चे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दह जिस प्रगटाया निकी कीरी में कल रख भस्म कर लश्कर कोट लख जिसका सास न काढ़त आप ताको राख देख रहात मानस जतन करतब पात किसके करतब बिरते जात मारण रख वरण कोई सर्व जिया का रख सोय काय सोच कर रे प्राणी जब नानक प्रबल कविडानी बार बार बार प्रभ जपिय पिय अमृत मंथन त्रपिय नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किछ अवर नाहीं दृष्टाया नाम धन नामो रूप रंग नामो सुखर नाम का संग नाम रस जो जन तृप्ताने मंत्र नाम है नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सदकाम भूलो जह जी बात न राउत प्रभ अपने जन की नींदात करे भगता तुम कह चाहे प्रभ अपने सो रह समाए जो हुआ हुवत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बकानू तिसका गुण कहे कि न जानू आठ पैर प्रभ सह हजूरे कहो नानक से ही जन पूरे मन मेरे तिनकी ओट लेहे मन तन अपना तिन जन देहे जिन जने अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर सब पाप मिटावे अवर स्यान सगली चाड़ तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान न होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ तिसकै संग सिख उतरै नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिखी करै प्रतपाल सेवक कौ गुर सदा दयाल सिखी गुर दुरमत मल हिरै गुर बचने हर नाम उचरै सतगुर सिखे बंधन काटै गुर का सिख विकार ते हटै सतगुर सिखो नाम धन दे गुर का सिख बड भागी हे सतगुर सिखा हलत पलत नानक सतगुर सिख को जी नाल सुमार है गुर कै ग्रह सेवक जो रहे गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे मन बिच सतगुर कै पास तिस सेवक के कार्य रास सेवा करत हुए निकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिसाप करे नानक सो सेवक गुर की मतले बीस विश्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुरु जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुर को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता अठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म एक कै आप नहीं कछ परम
ਸਹਿ ਸਿਆਨ ਭੁਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਏ, ਸਫਲ

दर्शन एकत पुनीत परसत चरणगत निर्मल रीत पेट संग्राम गुण रवि पार ब्रह्म की दरगह गवे सुनकर वचन करण या घरनी मन संतो गातम पतियानी पूरा गुरु के जा का मंत्र मृदृष्ट पे कह हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पाव है तिसले मिलाए जी बाय कुस्तत अनेक सतपुरुष पूर्ण भवे काउ बोल न पहुंचत प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदायी ताकि कीमत किने न पाई अनिक भगत बंधन नित कर है चरण कमल हृदय सिमर है सद बलिहारी सदगुरु अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो आरस पावे जन कोए अमृत पीवे मर सोए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुणतास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश शिव को दे मोह माया कै संग न लेप मन मेरा कै हर हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक परमो दुख तैते न से तब तुम्हारे ठाठ वरताई अनंत भया दुख न ठे पाई जन्म मरण के मिटेन देशे साधु के पूर्ण उपदेशे पौ चूका निर्भव हो बसे सगल ब्याद मन ते कह न से जिसका सचिन कृपा धारी सा संग जपना मुरारी थित पाई चुके भ्रम गवन सुन नानक हर हज श्रवन निर्गुणा सरगुण पियो ही कला धार जिन सगली मोही अपने जल प्रभा बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोए सर्व निरंतर एको सोए ओत पोत रव्या रूप रंग भय प्रकाश साध कै संग रच रचना अपनी कल धारी अनिक बार नानक बलिहारी श्लोक साथ न चले बिन भजन बिख्या सगली चार हर हर नाम कमावना नानके धन सारस्पदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपास मीत विसारो चरण कमल हृदय में उर तारो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहु नाम हरवत तन संचो हो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एकाश रखो मन माहि सर्व रोग नानक मिट जाहि जिस तन को चार कुंठ उठतावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख को नित बाचे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करे भली करनी सा शोभा पज हर की सरनी अनिक पावी रोग न जाए रोग मिटे हर कद लाए सर्व निदान में हर नाम निदान जप नानक दरगह परवान मन प्रबुद्धो हर कै नाय ठंडा हर नाउ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाओ बिन सह पूर्ण होयासु भगत पाया तुम प्रगास तित कर जाए बसै बिनासी कौ नान काटी जम फासी तत विचार कह जन साचा जन मरे सो काचू काचा आवागमन मिटै प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव रतन जन्म का हुए उधार हार हार सिमर प्राण आधार अनिक पाव न छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंचत नानक फल पाए संग न चालस तेरे तना तू क्या लपटा वह मूर्ख मना सुतमीत कुटंबर बनता इनते कहो तुम कवन सुनाता राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार आस हस्ती रथ सवारी झूठा डंप झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझे न बेगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मातू ले आने भगत बिना बड़ू बेस्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिक जाहे आप जपो अबरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो सार भूत सत हर को नाओ
सह सुभाई नानु गुण गाओ, गुण गाओ तेरी उत्तर समैर, बिन सुजाय हो मैं बिख फैल, हुए अचिंत बसै सुख नाल, सास बिरा सरनाम संभाल, छाड़ सियान सगली मना, सास संपावे सच तना, हर पूंजी संज करो बिहार, यहाँ सुख दर गै जयकार, सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जा कै मस्तक लेख, एको जप एको साला, एक सिमर एको मन आहे, एक इसके गुण गाओ अनंत, मंथन जाप एक भगवंत, एको एक कर आपूर्ण पूरे प्रव्याप, अनेक विस्तार एक ते पहि कराज बरा चित गए, मंथन अंतर एक प्रव्राता, गुरु प्रसाद नानक एक जाता श्लोक, फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाए, नानक की प्रभेनती अपनी भक्ति लाए, अष्टपदी जाचक जन जाचै प्रवधान, कर कृपा देवो हर नाम, साजन की मांगो तूर, पार ब्रह्म श्रद्धा पूर, सदा सदा प्रभु के गुण गाऊं, सास सास प्रभु तुम्हें त्याहूं, चरण कमल सिंह लागै प्रीत, भगत करूं प्रभु के नित नीत, एको टेको आधार, नानक मांगे नाम प्रसाद, प्रभु की दृष्टमा सुख होए, हर सुभावे बिरला कोए, जिन चाकैसे जिन तृप्ताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने, सुपार परे प्रेम रस रंगु, बुझै चाओ साथ कै संग, परे शरणान सब त्याग, अंतर प्रकाशन दिन दिवलाग, बुढ़ भागी जपिया प्रभु सोए, नानक नाम रते सुख होए,

0: जाप अष्टपदी। जब कार्यु कछ न दृष्टिता पापन तब कहते होता, जब तारी अपन सुन संभाता बैर विरोध किस संकमात। जब इसका वरण चेन न जापत तब हरक शोक किसे व्यापत। आ जब अपना पापार ब्रह्म तब मोह का किसोवत परम अपन खेला वर्ती जाना न करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी
1: जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए। जब आपे आप अपनी जोत तरे तब कवन डर कवन कट डरे। आपन चलते आप करने हार नानक ठाकुर अगम पार। अबनासी सुख आपन आसन तय जन्म मरण को कहा विनाशन। जब पूरन करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत गोचर प्रभ एका तब चित्र गुपत किस पूछत लेखा।

0: मानव इंद्र गजेंद्र नराधव जौन त्रिलोको राज करेंगे।
1: कोट स्नान गजादक दान अनेक स्वयंवर साज भरेंगे।
0: महेश्वर विष्णु सचिपत अंत फस

जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। वाहिगुरु, सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दे राखे आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरु धाम जिन्हां तो सिख पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो जी।

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नंगे फिर है जन विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खिड है विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगह प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद

जात है। हमें कर्म कमाए हमें ही बंदना फिर पर जो नहीं पाए। हमें कितो उपजा किस जमे जाए। हमें हुक्म है पै कर फिराए।

ने किया चंगियाईया लख पुना पुरवान लख तपूपर तीर्थां सहजोग वेबाण लख सूरतन संग्राम रण में छुट्टे प्राण लख सूरत लग्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करता करना किया लिख्या उन जान नानक मति मिथ्या कर्म सच्चा नी सण पौड़ी सच्चा सह।

0: मूर्ख अंधे पत गवाए बिन नावे किछ थाए न पाए रह बेबाणी मणि मसाणी अंध न जाना सिर पछताणी
1: गुर भेटे सो सुपाए हर का ना मन मसाए नानक नजर करे सपाए आस अंधे से ते न केवल हो मैं शब्द जलाए पौड़ी पंग तेरे मन पाऊं दे।

जो धा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करेगा वावे मंगे मुख द्वार जति सदावे जुक्त न जाने छड़ बह कर बार सबको पूरा पे होवे कट न कोई आखे।

नानक मेर शरीर का एक रथ इक रथवाहो, जुग जुग फेर बटाइया ज्ञानी बुझहता है। सचुग्रस्त संतो का धर्म गैरथवा हो, त्रित रजत का जोर गैरथवा हो, द्वापर तप का सत गैरथवा हो, कलयुग रथगन का कूड़ गैरथवा हो।

मल रुख सराय रात दीर्घात मोच ओ जे आवहे आस कर जाहे निरासे केत फल फिक्के फल बक बके कम ना वह पत मिठत नीवी नानका।

ही पंडु पजे पंडे बाज ना कोए नानक पंडे बाहराए को सच्चा सोए जित मुख सदा सलाई पागारती चार नानक ते मुख जले।

गल्ला करे कढ़ेरिया खसम ना पाए साध आप गवाए सेवा करे ता किछ पाए मान नानक जिसनो लगा तिस मिले लगा सो परवान।

साहिब जी सलोक महला दूजा किस ही कोई कोय मांझ ने माणी एक तू क्यों ना मरी जै रोए जा लग चित न आवही किस ही कोई कोय मांझ ने माणी एक तू क्यों ना मरी जै रोए जा लग चित न आवही महला दूजा जा सुख ता सहरावियो दुख भी समालियो ओए

गढ़ मंदिर गच गिरिया किछ साथ न जाई सोएन साखत पौन वे त्रिग त्रिग चतुराई छत्ती अमृत परकार करह बहुमैल वधाई नानक जो देवै तिसै न जाननी मन मुख दुख पाई श्लोक महला तीजा पाड़ पाड़ पंडित मोनी थके देसंतर भव थके भिख धारी दूजे पाए नाव कदे न पायन दुख लागा अत भारी मूर्ख अंधे त्रै गुण सेव है माया के कै व्यवहारी अंदर कपट उधर भरन कहताई पाठ पढ़ है गावारी सतगुर सेवे।

मनमुख तिनके बखीली के करे जे सच्चा शब्द सुवारे उन्हां दी आप पत रखसी मेरा प्यारा शरणागत पए गुरुद्वारे नानक गुरमुख से सुहेले पए मुख उजल दरबारे पौड़ी स्त्री पुरख है बहुप्रीत मिल मोह वधाया पुत्र कलत्र नित विख है।

तप निर्भौ निर्भय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी।

संत अमर कर जाए, संत गड़बड़ हर प्रया कमाए, संत पापी पाप, संत कूड़े आर करे फिर रहे, संत मलेच माल पाक खाए, संत निंदक करे पाप, नानक नींद कहे क्या, मारे न जामा के, जो सुख पावे सही परिकार, सदा के नाम संत नाम, संत नाम, राम राम, संत दो, संत कहे सिर

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वाए अशांत पापी पाप अशांत मूर आए अशांत मलेश माल पाए अशांत निंद

संसार सर जोर कर देख सोए नाम कुटुंबी राती रुकी थी पौन पानी आगी पाता इस विच तरसी थाप थी कर्म साथ इस विच जगत के रंग फिर के नया बने रंग कर्मी कर्मी होए विचार क्या अब जिते सोहन पंच परवान नदरी कर्म सोए कच आई उठे पाए नानक गया कर्म खंड का एहो ज्ञान खंड का इतने पौन पान

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैगम गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच

अंत मूर्ख अंत घोर अंत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कल वाय संत पापी पाप असंत मूर आर संत मलेश मल पाए असंत निंदक कर नानक नीच कह जा मारे न जा माते जो तुख पाव सही सही पर सदा सदा मत संत नाम संत नाम राम राम संत दो संत कहें सिर्फ।

निर्भौ निर्वै अकाल मूरत अजूनी सैदम गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी।

अशंख मूर्ख अंध घोर अशंख चोर राम अशंख अमर कर जाए अशंख काल वाय अशंख पापी पाप अशंख मूर यार करे अशंख मलेश मल पाए अशंख

स्वस्थानी ब्रह्म कमल सुरेला भगत कमल कमल सिद्ध कमला कमल सृष्टि मात्र वेद पैया पंडित।

निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैगम गुर प्रसाद। जब आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत गड़बड़ हत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत मूर यार करे सजाए अशांत मलेच मार पाठाए अशांत

शरण गुर प्रसाद। जब आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच सुचे सोच न हो गई।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वाए अशांत पापी पाप अशांत मूड़े आर गए खुदाए अशांत मलेच मार पाए अशांत निंदक करे नानक नीच कह क्या बारे न जाना दे जो कुछ पावे सही सही कर सदा सदा मर संत नाम संत नाम राम राम संत दो संत कहें सिर्फ।

कालमूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद। जब आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक

अशंख मूर्ख अंध घोर अशंख चोर राम अशंख अमर कर जाए अशंख कल वाय अशंख पापी पाप अशंख मूड़े आर करें अशंख मलेच मल पाए अशंख निंदक करें पाप नानक नींद कहे मारे न जामा के जो तुम पावे सही तरीका

0: पे जाए ए साला जी खला है इतनी नदियां से बाहर सोमना जान समुद्र साथ होता गिरी को नौनी
1: अंत न सुखी कहना अंत न करने देना अंत न देखना सुनना अंत

सोहन पंच प्रवान नदरी कर्म करवे कच्छ आई उथे पाए नानक गया कर्म खंड का एहो ज्ञान खंड का किते पौन पानी वह संतर कित

कर्ता निर्भौ निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद। जब आदि सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य नानक उसी

अंत मूर्ख अंत घोर अशंत चोर राम अशंत अमर कर जाए अशंत गड़बड़ संत पापी पाप अशंत मूड़े आए पुरा संत मलेच मल पाप है असंत निंदक करें नानक नीच कह मर अन जान

निर्भउ निर्वै अकाल मूरत अजूनी सैदम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच

असंत मूर्ख अंध घोर असंत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत गलवड़ हत्या कमाए संत पापी पाप असंत कूड़े आर करे फिराए संत मरेत मार पाए असंत निंदक करे पा नानक नीच कहे विचार मारे न जावा

अशंत मूर्ख अंध घोर अशंत चोर राम अशंत अमर कर जाए अशंत कल वाए संत पापी पाप अशंत कूड़े आर करे संत मलेच मल पाए अशंत निंदक करे पाप नानक नींद कह क्या मारे न जावा जो तुम पावे सही परिपा सदा सलाम संत नाम संत नाम राम राम संत लो असंत कहें कृपा।